0: में पहली उत्तर कोरिया की यात्रा होगी। इस यात्रा से चीन का उत्तर कोरिया पर प्रभाव बढ़ेगा और चीन उत्तर कोरिया को आर्थिक और राजनीतिक लाभ प्रदान करेगा। एक रिपोर्ट।
1: चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग अपने दो दिन की यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। विदेशी विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बैठक का द्विपक्षीय संबंधों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। दरअसल दोनों देश अमेरिका के साथ अलग अलग टकरावों के मद्देनजर अपने पारंपरिक गठबंधन को पूरी तरह से बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन लंबे समय से उत्तर कोरिया का आर्थिक व मुख्य राजनयिक समर्थक रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: आर्मेनिया में संसदीय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है और मतगणना जारी है। आर्मेनिया के चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान लगभग 2000 मतदान केंद्रों पर हुआ, जहां 24 लाख से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। प्रारंभिक नतीजों के अनुसार सत्तारूढ़ सिविल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी लगभग 57% वोटों के साथ आगे चल रही है। रूस समर्थक स्ट्रांग आर्मेनिया गठबंधन लगभग 21% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर और पूर्व राष्ट्रपति रॉबर्ट कोरचियान के नेतृत्व वाला आर्मेनिया गठबंधन लगभग 8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। ये चुनाव वर्ष 2023 में अजरबैजान से आर्मेनिया की सैन्य हार के बाद पहला चुनाव है। नेपाल में कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण कल काठमांडू में संपन्न हुआ। इसका मुख्य विषय सीमाओं से परे बदलते विश्व में दक्षिण एशियाई साहित्य है। इस महोत्सव में नेपाल सहित पूरे दक्षिण एशिया के साहित्यकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने उपन्यास कारा के बारे में बताया। उन्होंने साहित्य को समाज, मानवीय अनुभवों और भावनाओं का प्रतिबिंब बताया। कार्यक्रम में अभिनेता और लेखक पीयूष मिश्रा, गायिका इला अरुण, लेखिका प्रतिभा रॉय, लेखक और फिल्म निर्माता राजशेखर, लेखक आचार्य प्रशांत और अन्य कई प्रमुख साहित्यिक हस्तियों ने शिरकत की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा भारतीय पहलवानों ने मंगोली में चल रहे उलान बतोर ओपन 2026 टूर्नामेंट में 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना सफल अभियान समाप्त किया। भारत की झोली में कुल 16 पदक आए, इनमें 8 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ। अप्रैल के युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फिलीपींस के मिंडानाओ प्रांत में आज तड़के 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नीतू एक बार फिर से हाजिर है और ये है आपका मनपसंद प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें हम आपकी रिक्वेस्ट शामिल करते हैं। और रिक्वेस्ट लेने का तरीका आपको पता ही है, क्योंकि अब तक बहुत सारे मेल मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता देती हूँ। fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी पसंद के गाने की रिक्वेस्ट

भेज सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की। अभी तो जिनकी रिक्वेस्ट पूरी हो रही है वो हैं अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमार। जहां आरा फिल्म

ये जो क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये जो सवाल है ना, बड़े ही कठिन सवाल होते हैं। इनके जवाब आपको मिल ही जाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने अपने ख्यालात कहीं शेयर किए हैं, अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाई है, तो आज नहीं तो कल वो रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है। इस बात की मैं गारंटी तो नहीं, लेकिन हाँ, इस बात का भरोसा तो है ही, क्योंकि हर रोज ये प्रोग्राम जाता है और दिन में 2 बार आपके रिक्वेस्ट बेस्ड प्रोग्राम्स जाते हैं, तो आपकी रिक्वेस्ट कभी ना कभी तो पूरी हो ही जाएगी। अगली जो रिक्वेस्ट आ रही है वो है दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई की। ये सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में एक गाना जो कि है जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से।

0: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
1: ये है दिल का मेल बॉक्स नीतू के साथ। आप हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर और अब जो उनकी फरमाइश पूरी हो रही है ये सुनना चाहते हैं। एक रोमांटिक गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, फिल्म है जानवर और ये जिन्होंने सुनना चाहा है उनका नाम है पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और नारायण इंगले, सोपान ताड़े, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहर्रेकर।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agnivir Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
8: ये है दिल का मेल बॉक्स और दिल का मेल बॉक्स में अब बारी आ गई है रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रितेश की पसंद के गीत की, जो कि बहुत ही डुएट सॉन्ग है और बड़ा ही रोमांटिक सा गाना है। छेड़छाड़

अगला और आखिरी गीत आ रहा है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन और दीपांशु की पसंद पर। मुकेश जी की आवाज में है ये गीत, आप इस गीत का लुत्फ उठाइए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं आपसे तस्वीर में मिलती हूँ।

0: हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब, कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
3: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the

104.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ शुरू हो गया है तस्वीर और आज हम बात करेंगे उस पहाड़ी शहर की जो मेघालय की राजधानी तो है ही पूर्वोत्तर भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। अंग्रेजों को यहाँ की कुदरती खूबसूरती इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट नाम दे दिया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये है समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर बसा शिलोंग, जो अपनी हरी भरी वादियों, झरनों और सुहाने मौसम के लिए मशहूर है। तो आज शिलोंग की ही बातें करेंगे तस्वीर में, जुड़े रहिएगा आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ।

शिलोंग की बातें हो रही हैं तो शिलोंग में औपनिवेशिक दौर की इमारतों और स्मारकों की भरमार है जो इसकी समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाते हैं। शिलोंग कैथेड्रल गॉथिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ऑल सेंट चर्च हलचल भरे शहर के बीच एक शांत और आध्यात्मिक जगह है जो औपनिवेशिक वास्तुकला का एक और बेहतरीन उदाहरण है। डॉन बॉस्को म्यूजियम एक 7 मंजिला इमारत जहां प्राचीन कलाकृतियों का विशाल भंडार देखा जा सकता है। यहां आप पूर्वोत्तर भारत की स्थानीय संस्कृतियों के बारे में भी जान

नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई, बहुत प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा, बड़े बड़े स्टॉलवर्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष्य पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

100.1 का आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर तस्वीर में हम बातें कर रहे हैं शिलोंग की। और शिलोंग का जो सबसे मशहूर टूरिस्ट प्लेस है वो है शिलोंग पीक, जो राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। इस चोटी से आसपास के नजारों का 360 डिग्री व्यू दिखता है। एक मिस्टीरियस सा कोहरा यहाँ अक्सर छाया रहता है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पीक के अलावा आप वार्ड्स झील देख सकते हैं या उमियम झील। ये दोनों ही इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलें हैं। ये कुदरती खूबसूरती के बीच पानी से लबालब भरी झील में बोटिंग करने से बेहतर और क्या ही हो सकता है। आपको बोटिंग ना भी करनी हो तो आप झील के किनारे टहलिए। वैसे ये जगह पिकनिक के लिए भी बहुत पसंद की जाती है। और उमियम झील में आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी उठा सकते हैं। बोटिंग तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके साथ साथ आप वाटर स्पोर्ट्स का आनंद भी उठा सकते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

करता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।

एफएम गोल्ड पंडितू के साथ हैं आप और ये है तस्वीर जिसमें बातें हो रही हैं शिलोंग की। अलग अलग संस्कृतियों का संगम जहां देखने को मिलता है, जहां मुख्य रूप से खासी, जयंतिया और गारो जनजातियां रहती हैं। शहर की संस्कृति जो है बहुत ही जीवंत है और इसे यहाँ के कई त्योहारों, स्वादिष्ट खान पान, अनोखे संगीत और लोक नृत्यों के जरिए महसूस किया जा सकता है। मशहूर शिलोंग ऑटम फेस्टिवल इस जीवंत सांस्कृतिक के जो माहौल को ना बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। ये संगीत, कला और संस्कृति को एक साथ लाने वाला मंच है। इस रंगारंग आयोजन के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं के लिए जो मंच है वो मिलता है। कुदरत के अलावा शिलोंग की ये सबसे बड़ी पहचान जो है ना वो यही है, यहाँ के लोगों का संगीत प्रेम। इसीलिए इसे भारत की रॉक म्यूजिक कैपिटल भी कहा जाता है। संगीत संस्कृति यहाँ के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ कई कैफे और वेन्यूज हैं जहाँ लाइव परफॉर्मेंस होती है, जो संगीत के प्रति शहर के प्यार को दर्शाती है।

इश्क का तो ऐसा ही है, जिस भी चीज से आपको इश्क होना तो फिर बस वही चीज, वही इंसान, वही बातें आपको नजर आती हैं। तो इसीलिए इश्क को, इस तरह के जो गाने हैं ना, वो इश्क पर बन गए हैं। और अगर आपको घूमने फिरने से इश्क है तो फिर ये जो हमारा प्रोग्राम है ये आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें हम बात करते हैं अलग अलग जगहों की जहां पर आप जा सकते हैं, वहां की खासियत देख सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। और ऐसी ही जगह है शिलांग। शिलांग की साफ सुथरी सड़कें, चीड़ के जंगल, रंग बिरंगे फूल और बादलों से ढकी पहाड़ियां आपको यहां थकने तो बिल्कुल नहीं देंगी। और अगर आप वाकई एक ट्रैवलर हैं तो लोकल मार्केट भी घूमना चाहेंगे और लोकल व्यंजनों का लुत्फ भी उठाना चाहेंगे। इसके लिए आप जा सकते हैं पुलिस बाजार और बारा बाजार। इन चहल पहल वाले बाजारों में पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट, बेहतरीन हैंडलूम और अनोखे लोकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ आपको पारंपरिक खासी ड्रेस और हाथ से बुने शॉल से लेकर बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट्स और ऑर्गेनिक मसाले तक सब कुछ मिल जाएगा। खाने पीने के मामले में भी शिलांग निराश नहीं करता है। यहाँ के खाने में पारंपरिक आदिवासी स्वाद और आसपास के इलाकों के स्वाद का जो मेल है ना, वो आपको देखने को मिलेगा। और अगर खास पकवानों की बात करें तो जादो है जो कि खासी चावल का व्यंजन है, और तुंगक्रीम बाई जो कि सोयाबीन की चटनी है। अगर आप वेजिटेरियन है ना तो कुछ भी ऑर्डर करने से पहले कन्फर्म जरूर कर लीजिएगा कि जो आप खा रहे हैं वो वाकई वेज ही है।

0: टैलेंट तो है, पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.delhitalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join

0: Indian Navy.
1: में शिलोंग की बातें, और जो लोग शिलोंग जा चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा कि शिलोंग कितनी खूबसूरत जगह है। वहां की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल है। यहां कई ऐसी जगह हैं जहां कुदरत अपने शानदार रूप में दिखती है। एलिफेंट फॉल्स और स्वीट फॉल्स ऐसी ही जगह हैं जो अपनी साफ सुथरी सुंदरता से प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। एलिफेंट फॉल्स घनी हरियाली से घिरा हुआ 3 स्टेप्स वाला खूबसूरत झरना है। इसका नाम इसके बेस पर मौजूद एक पत्थर के आकार के कारण पड़ा जो कि हाथी जैसा दिखता है। ये इलाका पिकनिक और नेचर फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन माना जाता है। आपको तितलियां पसंद हैं? अगर पसंद हैं तो फिर जाइएगा बटरफ्लाई म्यूजियम। यहां सिर्फ तितलियां ही नहीं बल्कि कीट पतंगों की भी बहुत सारी किस्में देखने को मिलेंगी और उनके बारे में जानकारी भी मिलेगी। फिलहाल तो मैं आपको एक गाना सुनवा रही हूं जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसमें शायद आपको दिल और तितली का कोई संगम मिल जाएगा, क्योंकि दिल को भी तितली जैसा ही माना जाता है ना, कभी भी कहीं भी उड़ के चला जाता है।

शिलांग जाने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है सितंबर से मई के बीच। जून से अगस्त सितंबर तक मॉनसून रहता है। इस समय यहाँ झरने तो अपने पूरे शबाब पर होते हैं, लेकिन बारिश में शायद ही आप कहीं घूम पाएं। तो जाने से पहले पूरी रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो सीधे शिलांग में उमरोई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, जिसे शिलांग एयरपोर्ट भी कहते हैं। और ट्रेन से जाने की प्लानिंग है तो ट्रेन आपको गुवाहाटी तक ले जाएगी, वहां से आपको लेनी पड़ेगी टैक्सी।

गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य

0: लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. The Prime Minister said the journey of Garib Kalyan has become a collective movement.

0: 당근.
1: घर सिर्फ दीवारों में नहीं बसता, वो बसता है उन आवाजों में जो सुबह भाप चाय की भाप के साथ उठती है और शाम को थकी हुई मुस्कान बनकर लौटती है। घर वो है जहां बातें कभी पूरी नहीं होती और खामोशियां भी अपनी सी लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर इन्हीं एहसासों, इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों और रिश्तों की गर्माहट को समेटे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। दोस्तों, आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आइए इस आंगन में कुछ देर ठहरते हैं जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती है और हर बात दिल तक उतरती है, और यहां हम मनाते हैं आपके साथ हमारी बातों का एक बेहतरीन गुलदस्ता जिसमें सजे होते हैं खूब सारे फूल, और बस फूलों को देखते ही याद आती है क्या बहारें।

जी हाँ, आपसे मिलने के लिए हम आ गए हैं कहाँ, लेकर कार्यक्रम घर आंगन 7.1 MHz FM गोल्ड पर। आप ये गाना सुन रहे थे, फिल्म थी आन मिलो सजना और स्वर थे मोहम्मद रफी के साथ लता मंगेशकर के। अच्छा दोस्तों, आपको पता है ना आप हमसे कहाँ मिलते हैं? आप हमसे मिलते हैं fmgold@gmail.com पर। तो आपकी बातों का, आपकी सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा इंतजार। हम सर आपके साथ आज मौजूद हैं लेकर कार्यक्रम घर आंगन। और दोस्तों, आज है 8 जून, मतलब 90 वर्षों से ये जो एक आवाज निरंतर हमारे साथ चल रही है ना, कभी समाचार बनकर, कभी संगीत बनकर और कभी हमारी स्मृतियों का हिस्सा बनकर, आज आकाशवाणी, हमारी अपनी आकाशवाणी, अपनी गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पर सभी श्रोताओं, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों, तकनीकी कर्मियों और प्रसारण से जुड़े प्रत्येक साथी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोक परंपराओं, साहित्य, संगीत और इतिहास की अनमोल धरोहर को भी सहेज कर रखा है। और जब हम इस विरासत की बात करते हैं ना, तो आकाशवाणी के अभिलेखागार अर्थात AIR आर्काइव्स का उल्लेख स्वाभाविक हो जाता है ना। और ये अभिलेखागार केवल रिकॉर्डिंग का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत की सामूहिक स्मृति का जीवंत दस्तावेज है। यहाँ महान विभूतियों की आवाजें, दुर्लभ संगीत, लोकगाथाएं, साहित्यिक कृतियां और इतिहास के महत्वपूर्ण क्षण आज भी सुरक्षित हैं। दोस्तों, समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन अभिलेखागार उन आवाजों को जीवित रखते हैं जिन्होंने अपने युग को स्वर दिया था। यही कारण है कि AIR आर्काइव्स केवल अतीत का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अमूल्य खजाना है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा को नमन करते हुए, इस समृद्ध प्रसारण विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को हम याद करते हैं जिसने देश को सुनने, समझने और जोड़ने का काम किया। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि आज इस अवसर पर हम आपके लिए आकाशवाणी की जो 90 वर्ष की यात्रा है, इस उपलक्ष्य में आज शाम 4 बजे हमारे दिल्ली स्थित रंग भवन सभागार में आकाशवाणी एट 90 एक संगीतमय यात्रा, इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस विशेष सांस्कृतिक संध्या में देश की विविध लोक एवं संगीत परंपराओं की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में आपको बता दें, नाद एट 90, रंग पंजाबी, मरुतरंग और यूथ वाइब्स जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता और आकाशवाणी की समृद्ध प्रसारण विरासत का उत्सव मनाया जाएगा। आइए हम सभी आकाशवाणी की 90 वर्षों की इस यादगार यात्रा के साक्षी बने और संगीत, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्तियों से सजी इस विशेष संध्या का आनंद जरूर लें। और अगर आप किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो इस समारोह का ना सजीव प्रसारण आप आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ये है हमारी आकाशवाणी, जो हमेशा हमारे साथ निरंतर बनी हुई है, क्योंकि सब चीजें गुम हो जाती हैं लेकिन आवाज कभी गुम नहीं होती।

0: फिल्म किनारा में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ भूपिंदर की आवाज में ये गीत।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

दोस्तों, कभी कभी मन को विश्राम नींद से नहीं, मौन से मिलता है। हम दिन भर लोगों से, परिस्थितियों से और बहुत सारे विचारों से घिरे रहते हैं। बाहर की दुनिया से संवाद करते करते हम अपने भीतर के स्वर को सुनना ही भूल जाते हैं। ऐसे में योग केवल शरीर को साधने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्वयं तक लौटने का एक मार्ग बन जाता है। योग साधना का एक महत्वपूर्ण आयाम है क्या? जी हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान हमें संसार से भागना नहीं सिखाता, बल्कि खुद के भीतर ठहरना सिखाता है। जब हम कुछ पलों के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। विचार आते हैं जाते हैं और उनके बीच एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो भीतर संतुलन और स्थिरता का अनुभव कराता है। भारतीय दर्शन में योग का उद्देश्य केवल स्वस्थ शरीर प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस चेतना से जुड़ना है जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान है। परम चेतन में लीन होने का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि खुद को अधिक गहराई से पहचानना है। शायद इसीलिए योग कोई अभ्यास का मार्ग नहीं है और ये कोई अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा। और इस यात्रा में हम दुनिया को नहीं, खुद को पाना सीखते हैं। स्वयं को पहचानना सबसे बड़ा सुख है। मन ही वो दर्पण है जो हमें खुद की पहचान खुद से करवाता है।

फिल्म काजल में आप सुन रही थी आशा भोसले की आवाज में ये गीत। और देखिए ना दोस्तों, हमने आपसे एक गुजारिश क्या की, आपने हमारी हर बात मानी, हमेशा मानी। तो बस देखिए, आपकी मेल्स हमारे पास पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, ये हमारे साथ हैं केशव विवेक।

प्रियांशी चौधरी वास हिसार हरियाणा से और लिखते हैं कि सोनाली जी नमस्कार, 12:10 पर आपकी आवाज पहचान गया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आवाज पहचान ली। और लेकिन आपको हमसे ये शिकायत है कि हम सुबह 10 बजे इंद्रप्रस्थ पर क्यों नहीं आते। अरे 10 बजे नहीं तो हम 12 बजे तो आ गए ना, कभी ना कभी तो आपके साथ सारे दिन में कहीं ना कहीं आप हमें सुन ही लेंगे। और इस बहाने आप बहुत सी दूसरी आवाजों को भी तो सुनते हैं, तो बस सबकी आवाजों में सबका स्वागत कीजिए और लगातार बनी रहिए कहाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, ये भी हमें नमस्कार कर रहे हैं और लिख रहे हैं, सभी को आकाशवाणी की 90 ईयर्स पूरे होने की शुभकामनाएं और 8 जून 1936 से 8 जून 2026 और आगे कई सदियों तक। शुक्रिया जी, आकाशवाणी की आवाज लगातार आपके साथ जुड़ी रहेगी कई कई सदियों तक। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़े हैं, जी हाँ, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष पूरे होने की कोटि कोटि हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन, मधुर प्रस्तुति, मोहक बातें, मनपसंद गीत और मनभावन बातें भी हैं। दिल से बड़ी बधाई, आपका दिवस और जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लिखते हैं हमें हमारे श्रोता। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ राजू अग्रवाल जी लिख रहे हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, आज जमाने में विडंबना यह है कि अच्छा हमारा चेहरा दर्पण को अच्छा नहीं, देखिए आप इस तरह से बातें ना लिखिए, बहुत सी बातें ऐसी थी, हर चेहरा खूबसूरत होता है, चेहरे की खूबसूरती आपके मन से ही जाहिर होती है। तो आपका जो चेहरा है वो तभी खूबसूरत है जब आपका मन खूबसूरत है, और हर चेहरा हर तरह से हमेशा बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि हम हर इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी और अनुपम कृति हैं। हम सभी बहुत खूबसूरत हैं और आप सभी की इतनी प्यारी प्यारी मेल्स के लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 100.1 MHz FM गोल्ड पर कार्यक्रम घर आंगन और मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो हम सफर सुनाली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया। जी हाँ, छोटे कारोबार अक्सर बड़े सपनों की शुरुआत होते हैं। ऐसे ही लाखों रेहड़ी पटरी और ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की यह योजना छोटे दुकानदारों और फेरी लगाने वाले लोगों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। योजना के तहत ना दोस्तों, बिना किसी जमानत के बैंक से धनराशि प्राप्त की जा सकती है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो ये है कि समय पर राशि वापस करने वालों को आगे और ज्यादा सहायता मिलने का अवसर भी मिलता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो योजना है ना, ये दरअसल उन लोगों के लिए है जो शहरों में रेहड़ी पटरी ठेला या फेरी लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। कोरोना काल में शुरू की गई ये पहल आज भी लाखों छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। यदि आप या आपके आसपास कोई स्ट्रीट वेंडर इस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहता है ना, तो आप प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल या अपने स्थानीय नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, ये छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं, ये छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं, ये अपनी बहुत मेहनत से अपनी आजीविका कमाते हैं, तो इस तरह की योजना का लाभ उठाकर ये अपने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर फेरी वालों के पास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, खूब सारी सजधज का सामान भी मिलता है, दुपट्टे मिलते हैं, ओढ़नी मिलती है, फिर क्या मिलती है, चूड़ियाँ भी तो मिलती हैं, है ना।

फिल्म सुहाना सफर में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग समुद्र से दूर रहते हैं, लेकिन सच ये है कि महासागर हमसे कभी दूर नहीं होते। हमारे आसपास जो हवा बहती है, जो वर्षा हमें मिलती है और पृथ्वी पर जो जीवन संभव है, उसमें महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ना वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी और साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। यानी आज है 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस। इस वर्ष ना विश्व महासागर दिवस की जो थीम है वो है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी उसका संरक्षण करें जो हमें जीवन देता है। पृथ्वी की लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है। ये जलवायु को संतुलित रखते हैं, वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं

और पृथ्वी पर उपलब्ध जो हमारी ऑक्सीजन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री वनस्पतियों के माध्यम से हमें मिलता है। दोस्तों, आज महासागर प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ते तापमान और जैव विविधता के संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये जो दिन है ना, ये हमें याद दिलाता है कि महासागर केवल जल का विशाल भंडार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। आइए इस दिन, इस अवसर पर हम प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और आने वाली पीढ़ियों के लिए महासागरों को सुरक्षित रखने का संकल्प लें।

फिल्म बारूद में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये बहुत प्यारा सा गीत। और देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी, जी हाँ घर आंगन की, क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। जीवन में ना कभी कभी कुछ भूमिकाएं हमारी प्राथमिकता बन जाती हैं। परिवार, बच्चों की देखभाल या अन्य जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं अपने करियर से कुछ समय के लिए दूरी बना लेती हैं, है ना। और फिर क्या होता है कि इसके बाद में वापसी में कुछ परेशानियां आने लग जाती हैं, लेकिन करियर में दोबारा वापसी करने का पहला कदम

क्या है, वो है अपने अनुभव और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना। भले ही कार्यस्थल दूरी रही हो, भले ही आपकी अपनी कार्यस्थल से दूरी रही हो, लेकिन इस दौरान ना जो आपके अंदर एक धैर्य, एक टाइम मैनेजमेंट और एक समस्या का समाधान, कुछ ऐसे कौशल हैं जो आपने इस दौरान अगर अपने अंदर विकसित किए हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगरी साबित हो सकते हैं। वापसी की तैयारी के लिए ना आपको अपने क्षेत्र की नई जानकारियों और तकनीकों से स्वयं को अपडेट रखना उपयोगी हो सकता है। देखिए आजकल ना ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे से कोर्सेज हो गए हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। वेबिनार और डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखने के बहुत सारे अवसर हमें उपलब्ध बहुत सहज तरीके से कराते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। जैसे आप सबसे पहले क्या करिए, आप पहले पार्ट टाइम कहीं फिर कोई काम ढूंढिए, फिर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, घर से काम या फिर अपना खुद का छोटा कोई उद्यम हो सकता है, जहां पर कई महिलाओं के लिए ये जो तरीके होते हैं, ये जो ऑप्शंस होते हैं, ये आत्मविश्वास लौटाने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकते हैं। सबसे जरूरी बात वो ये है कि करियर में आया जो ये विराम है ना, ये आपकी क्षमता को कम नहीं करता, लेकिन जीवन के हर अनुभव से व्यक्ति हमेशा समृद्ध होता है, ये आप हमेशा याद रखें। इसीलिए यदि आप दोबारा शुरुआत करना चाहती हैं तो आपको बस कुछ चीजें याद रखनी हैं। जैसे आपने केवल कुछ समय का विराम लिया है, आपने अपनी पहचान खोई नहीं है, आप खुद को फिर से वापस उस फील्ड में, उस जगह पर दोबारा ला सकती हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा रहा है, या आपने जिस कार्यक्षेत्र से कुछ समय के लिए दूरी बनाई है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए आप अगर अपनी क्षमताओं को और दोबारा तौलें और एक नई शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नया मोड़ दें।

दोस्तों, आज की ना जो माँ है, जी हाँ, उसके सामने ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वह घर भी संभालती है, बच्चों का ध्यान भी रखती है और कई बार अपने कामकाजी जीवन की जिम्मेदारियां भी निभाती है, मानेंगे ना। और अगर ऐसे में अक्सर ना वो खुद को या अपने आप से ये अपेक्षा करने लगती है कि उसे हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ होना है, लेकिन क्या सचमुच बच्चों को ऐसी सर्वश्रेष्ठ या सुपर मॉम की जरूरत है? ना ना, बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है पता है आपको? एक ऐसे घर की जहाँ अपनापन हो, संवाद हो और मुस्कुराहटें हो। इसके लिए माँ का हर समय परिपूर्ण होना जरूरी नहीं, बल्कि उसका खुश और संतुलित रहना सबसे अधिक जरूरी है। जब माँ खुद के स्वास्थ्य, अपनी रुचियों और अपने आराम का ध्यान रखती है ना, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव है ना, वो पूरे परिवार पर पड़ता है। जो माँ खुद खुश रहेगी, वही बच्चों को जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास का महत्व भी सिखा पाएगी और अपने बच्चों को खुश रहना भी सिखा पाएगी। इसीलिए खुद पर ना मतलब जिसे कहते हैं कि अनावश्यक दबाव डालने की बजाय ये स्वीकार करना जरूरी है कि पूर्णता नहीं, प्रेम ज्यादा जरूरी है। हर समय सुपर मॉम बनने की कोशिश ना करें, इससे बेहतर है कि एक ऐसी हैप्पी मॉम बने जिस स्वयं का भी उतना ही ख्याल रखे जितना अपने परिवार और बच्चों का रखती है। आखिरकार बच्चों को वो माँ सबसे ज्यादा याद रहती है जो उनके साथ हंसी थी, उनके साथ बैठी थी और उनकी बातें जो हमेशा सुनती है ना। मतलब एक हंसती खेलती साथ देती माँ ही बच्चों को हमेशा अपनी याद रहती है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक ऐसी ही माँ हमारे बच्चों की नजर में हमेशा बनी रहे, क्योंकि केवल वह नहीं जिनके लिए हमने हमेशा पूरा काम किया है, बल्कि हम वो हैं जिन्होंने खुद खुश रहकर अपने बच्चों को खुश रहना सिखाया है, क्योंकि खुश माँ ही खुश परिवार की सबसे मजबूत नींव होती है, मानेंगे ना।

0: फिल्म घर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से लिख रहे हैं, आपको मेरा दिल से नमस्कार। आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को ये अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और देखिए चलते चलते आपसे बस यही बात कहूंगी कि हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि खुशी वहीं से शुरू होती है जहाँ हम रुक कर यह देखना सीखते हैं कि जो हमारे पास है वो कितना काफ़ी है, है ना। जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, एक शांत सा पल, एक गहरी सांस, किसी अपनी की सच्ची मुस्कान, इन सारी बातों को, इन सारे खजानों को अपने जीवन में संजोए रखिए, हमारे साथ बने रहिए हमारे कार्यक्रम घर आंगन में। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी आपकी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: घर आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में

करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा

0: देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding health care coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे आकाशवाणी परिवार को 90 साल हो चुके हैं, तो आकाशवाणी के 90 सालों के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया। आप सुनने वाले हैं तो हम बोलने वाले यहां पर बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आज एक और सेलिब्रेशन है। आज एक ऐसी कलाकार का हैप्पी वाला बर्थडे है जिन्होंने मेन स्ट्रीम और

पैरेलल सिनेमा दोनों में खूब नाम कमाया। एक ऐसी स्टार जिनकी चमक कई दशकों तक बरकरार रही और आज भी वो जब पर्दे पर आती हैं तो बस छा जाती हैं। बताइए बताइए, जरा सोचिए किन की बात करने वाली हूँ मैं। उनका एक गाना।

बिल्कुल सही नाम लिया था आपने। जी हाँ, आज मैं बातें करने वाली हूँ डिम्पल कपाड़िया की। दोस्तों, ये गाना आपने सुना मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। फिल्म का नाम है राम लखन और ये गाना फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ और डिम्पल कपाड़िया पर। डिम्पल कपाड़िया दोस्तों, इनके परिवार का ताल्लुक गुजरात से था। उनका जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। डिम्पल एक संपन्न परिवार में पली बढ़ी और हमेशा से इनका हाँफ था फिल्मों में आने का। अब अपनी बेटी के सपने को पूरा करने के लिए डिम्पल के पिता चुन्नी भाई कपाड़िया ने काफी कोशिशें की। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और चुन्नी भाई की मुलाकात हुई शोमैन राज कपूर के साथ। राज कपूर उन दिनों अपने बेटे ऋषि कपूर की पहली फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश में थे। डिम्पल से मिलने के बाद राज कपूर को परफेक्ट लड़की मिली फिल्म बॉबी के किरदार के लिए और वो लड़की थी डिम्पल कपाड़िया, जो कि उस वक्त महज 14 साल की थी। तो बॉबी फिल्म का नाम सुनने के बाद बॉबी के गाने सुनाना तो लाजमी है। चलिए सुनते हैं ये गाना।

लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में बॉबी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। यह गाना ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया पर फिल्माया गया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1973 में रिलीज हुई थी बॉबी फिल्म और ये डिंपल कपाड़िया की पहली फिल्म थी जिसे बहुत ही मोहब्बत बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया था राज कपूर ने। दोस्तों, बॉबी लीड एक्टर के तौर पर ऋषि कपूर की भी पहली फिल्म थी और दोनों के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। बॉबी 70s के दशक में रिलीज हुई उन फिल्मों में से एक थी जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई की थी और बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे। डिंपल कपाड़िया अपनी पहली ही फिल्म से स्टार बन गई थी और उन्हें घर घर पहचाना जाने लगा था। लेकिन दोस्तों, डिंपल कपाड़िया कुछ अलग थी। उन्होंने बॉबी के बाद लंबे टाइम तक कोई फिल्म साइन ही नहीं की। आखिर क्यों, बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले ये गाना, कहीं ना जाना।

0: लेकिन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना और इस फिल्म के लिए बहुत बहुत सारी तारीफें मिली थी डिंपल कपाड़िया को। उनके बारे में और भी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं ना जाना, सुनते रहना आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
6: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
7: Join Indian Navy. The Indian Navy invites online applications from unmarried male candidates for Agniveer Apprentice 01/2027 and 02/2027 batch. Last date for submission is 29th June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready. Cohesive. Atmanirbhar. Safeguarding seas for a Vikasit Samrit Bharat. Join Indian Navy.
8: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में आज हम बातें कर रहे हैं डिंपल कपाड़िया की। दोस्तों, डिंपल कपाड़िया बहुत ही छोटी थी जब उनकी पहली फिल्म आई। रिलीज भी नहीं हुई थी उनकी पहली

फिल्म वो ऑलरेडी बहुत मशहूर हो चुकी थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें राजेश खन्ना से मोहब्बत हो गई। राजेश खन्ना जो कि उस वक्त के सुपरस्टार थे, उन्होंने डिंपल से पहली मुलाकात में शादी की ख्वाहिश जाहिर की और डिंपल ने भी तुरंत हाँ कर दी। और इसके बाद पूरे 10 साल तक डिंपल ने फिल्मों से दूरी बना ली। जबकि पहली फिल्म हिट होने के बाद घर घर में उन्हें पहचाना जाने लगा था, वो बहुत मशहूर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने पूरा वक्त दिया अपनी शादी को, अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों को। दोस्तों, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की जो शादी थी उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनी थी और ये थिएटरों में रिलीज भी हुई थी, बहुत देखी गई थी उनकी शादी की फिल्म। शादी के 10 साल बाद डिंपल ने फिल्मों में वापसी की और क्या कमबैक था उनका, जी हाँ क्या कमबैक था। फिल्म का गाना सुनाती हूँ, फिर बताती हूँ कौन सी फिल्म से उन्होंने कमबैक किया था। वैसे तो आप पहचान ही गए होंगे, ये गाना है ही इतना मशहूर।

दोस्तों मैंने कहा था कि धुन से ही आप पहचान जाएंगे, इतना खूबसूरत गाना है ये सागर फिल्म का। और ये पूरा का पूरा गाना जो है ये फिल्माया गया है डिम्पल कपाड़िया पर, ऋषि कपूर पर। ऋषि कपूर तारीफ किए जा रहे हैं और डिम्पल की अदाएं हमें देखने को मिल रही हैं पर्दे पर। अगर नहीं देखी ये फिल्म तो जरूर देखिए। दोस्तों सागर के लिए डिम्पल कपाड़िया को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में। सागर 1985 में रिलीज हुई थी और फिल्मों में वापसी के बाद डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी। हमारे हिंदी सिनेमा में एक बड़ी ही आम धारणा रही है कि शादीशुदा अभिनेत्रियां जो हैं वो फिल्मों में ज्यादा कामयाब नहीं रहती, लेकिन डिम्पल कपाड़िया ने इस सोच को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया दोस्तों। जी हाँ, शादी के बाद एक लंबा अरसा गैप देने के बाद भी डिम्पल कपाड़िया ने एक शानदार वापसी की। ये खूबसूरत इत्तेफाक रहा कि इस बार भी उनके जो को स्टार थे वो ऋषि कपूर ही थे, साथ में थे कमल हासन। सुपरहिट रही थी सागर, एक आइकॉनिक फिल्म जिसकी कहानी, म्यूजिक, एक्टिंग सब कुछ शानदार था। डिम्पल को एक और काम के लिए बहुत ज्यादा तारीफें मिलती हैं, बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले जांबाज फिल्म का ये गाना, कहीं ना जाना, सुनते रहना आकाशवाणी फिल्म गोल्ड।

किशोर कुमार और सपना मुखर्जी की आवाज में आपने सुना ये गाना जांबाज फिल्म से। दोस्तों, डिंपल कपाड़िया एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हर तरह से खुद को बेहतरीन साबित किया है। डिंपल ने बड़े बजट की फिल्में की, मल्टी स्टार और फिल्में की और साथ ही उन्होंने कम बजट वाली कला फिल्मों में भी काम किया। डिंपल महिला प्रधान फिल्में करने वाली उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक रही हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है इन फिल्मों में। काश, दृष्टि, लेकिन, रुदाली, लीक से हटकर उन्होंने खूब काम किया है और साबित किया है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी अपने दम पर फिल्में हिट करवा सकती हैं। शायद आप जानते हो, रुदाली के लिए डिंपल कपाड़िया को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था और साथ ही साथ उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। तो अब ये गाना उसी फिल्म से।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ तथा 104 मेगाहर्ट्ज़ एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 जून महीने की 8वीं तारीख दिन है सोमवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्री तंजिन दौरजी, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री तानिंग ताको और श्री अंटू कुमार दास, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री अमल कुमार दास, मोनपा में उद्घोषक हैं श्री थुपतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक लाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: to there, and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor.
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया।
2: जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ।

0: population, broadcasting in 23 languages and 146 dialects. Akashwani's External Services Division broadcast to over 100 countries, projecting India's voice globally and connecting with the diaspora. Living up to its noble ideals of Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, the New Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country in varied terrains, 24/7 in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missile attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashwani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह न्यू मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका

0: पक्का कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान

0: भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
3: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और वे सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन

0: मामले में मिजोरम, म्यांमार सीमा, त्रिपुरा, बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9।
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक

0: दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे जगजीत सिंह की आवाज में चंद श्री राम भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।

जगजीत सिंह के श्री राम भक्ति भजन के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बजे हैं। चलिए अब सुनते हैं अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मर्तो कमदक और साथियों के आवाजों में चंद आधुनिक गालो नगमे। तो लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत मर्तो कमदक और साथियों से चंद आधुनिक कालो नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

0: मर्तो कमधक और साथियों के इन्हीं आधुनिक कालो नगमों के साथ ही अलग अलग प्रांतों के गीतों पर आधारित कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के छात्रिका कुमारी तेंजिन छोटन से आज की दुनिया में शिक्षा के महत्व विषय पर एक वार्ता।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम मेरी बात को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और ताशी दिलेक। मैं तेंजिन छोटन दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग में 5वें सत्र की छात्रा आज यह आज की दुनिया में शिक्षा के महत्व पर अपना विचार व्यक्त करना चाहूंगी। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे सोचने समझने और दुनिया को देखने का तरीका भी बदलती है। आज के समय में शिक्षा एक ऐसी चाबी बन चुकी है जो हमारे सामने अनगिनत अवसरों के दरवाजे खोलती है। जहां पहले शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना था, वही आज शिक्षा हमें आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सबसे बढ़कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। लेकिन यहाँ एक बात मैं ईमानदारी से कहना चाहूंगी, आज कई लोग शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित कर देते हैं। डिग्री मिल जाना सिर्फ एक प्रमाण है, वास्तविक शिक्षा हमारे व्यवहार में, हमारे रवैये में, हमारी समझ और हमारे ज्ञान में दिखाई देती है। आज की दुनिया में सफल होने के लिए केवल कागज की डिग्री काफी नहीं है। हम सबने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि कई लोगों के पास डिग्रियां तो है, लेकिन कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोण के अभाव से वे आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी समझ में असली शिक्षा वह है जो इंसान के स्वभाव को विनम्र बनाती है, उसकी सोच को विस्तार देती है और उसे कठिन परिस्थितियों में भी संयम, सम्मान और समझदारी से काम लेना सिखाती है। हमारे तवांग जैसे सुंदर और सांस्कृतिक क्षेत्र में शिक्षा का महत्व और भी गहरा महसूस होता है, क्योंकि यह शिक्षा सिर्फ करियर का रास्ता नहीं है, यह हमारे लिए अवसरों का पुल है जो हमें हमारी जड़ों, हमारी परंपराओं और हमारी पहचान से जोड़ते हुए हमें आधुनिक दुनिया से भी जोड़ता है। शिक्षा हमें सिखाती है कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें, लेकिन साथ ही अपने सपनों को भी उतनी ही ऊंचाई दे जितनी हमारे पर्वतों की है। और सच कहूँ तो शिक्षा जीवन को सिर्फ बदलती नहीं, जीवन को एक दिशा देती है, एक उद्देश्य देती है। कभी कभी शिक्षक का सरल सा वाक्य, किसी किताब की एक लाइन या किसी विषय को समझते समय मिलने वाली छोटी सी खुशी हमारी सोच को पूरी तरह बदल देते हैं, हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं। शिक्षा हमें संवेदनशील बनाती है, दूसरों को समझने की क्षमता देती है

0: यह हमें अपने सपनों के साथ साथ दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी सिखाती है और एक शिक्षित समाज की खूबसूरती यही है जहाँ विकास के साथ साथ मानवतावाद भी बढ़े। आज जब दुनिया इतनी जुड़ चुकी है कि एक छोटी सी जानकारी भी पलक झपकते ही दुनिया भर में फैल जाती है, ऐसे समय में शिक्षा हमें स्थिर रखती है, समझदारी देती है और यह विश्वास देती है कि हम भी इस बदलती दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगी कि सच्ची शिक्षा वह है जो हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे, क्योंकि ज्ञान से बुद्धि मिलती है पर शिक्षा से दिशा मिलती है। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत दोरजी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग की छात्रिका कुमारी तेंजन चौटन से आज की दुनिया में शिक्षा के महत्व विषय पर एक वार्ता।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:34 हुए हैं। श्रोताओं, आप सुनिए महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। नारी संगीत कार्यक्रम का पहला नगमा सुनिए कश्मीर की कली फिल्म से मोहम्मद रफी के आवाज में, बोल SH बिहारी के और संगीत OP नैयर का।

वेकअप सिट फिल्म से भी आप सुन रहे थे नारी संगीत कार्यक्रम का अंतिम नगमा कविता सेठ और साथियों की आवाजों में, बोल जावेद अख्तर के और संगीतकार शंकर एजान लॉय। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं और अब प्रस्तुत है फिल्म जगत के नव गीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का पहला नगमा पेश है तू झूठी में मक्कार फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। अभिजीत भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

अगला नगमा सुनिए कनिष्क सेठ और कविता सेठ की आवाजों में। जुग जुग जियो फिल्म के इस गीत को लिखा है ट्रेडिशनल ने और संगीत दिया है कनिष्क सेठ ने।

टू स्टेट्स फिल्म से पेश है अगला नगमा अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीवदा की आवाजों में। शंकर एजान लोई द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

बेनी दयाल और शिफाली आल्वारेस के आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये जवानी है दीवानी फिल्म का नगमा, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का। श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत फिल्म जगत के चंद नव गीतों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला नगमा सुनते हैं अतीफ असलम, मोनाली ठाकुर और प्रिया पांचाल की आवाजों में। तेरे नाल लव हो गया।

हम्टी शर्मा की दुल्हनिया फिल्म से पेश है अगला नगमा अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में, गीतकार अहमद अनीज और संगीत शरीफ तोशी का।

अगला नगमा सुनिए फनी खान फिल्म से सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार के आवाजों में, बोल इरशाद कामिल के और संगीतकार अमित त्रिवेदी।

0: कार्यक्रम का अगला नगमा पेश है दे दे प्यार दे फिल्म से सुनिधि चौहान और नवराज हंस की आवाजों में। विपिन पदवा द्वारा संगीतित इस गीत को लिखा है कुमार ने।
1: We are controlling transmission.

श्रोताओं, ट्यूबलाइट फिल्म से भी आप सुन रहे थे गीत मंजरी कार्यक्रम का अंतिम नगमा अतीफ असलम के आवाज में, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत प्रीतम का। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। चलिए अब आनंद लेते हैं शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन का। राग है मेघ मल्हार तथा तबले पर संगत दिया है संदीप दास ने।

श्रोताओं आप सुन रहे थे मेघ मल्हार राग पर पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग अब समाप्त होता है। आपकी सेवाओं में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 हो रहे हैं। श्रोताओं आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताई तागाक ने आज राज्य विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अफरा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी है। भारतीय सेना के स्पेयर कोर के अंतर्गत स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकावाली में प्रोजेक्ट नव भारत के तहत एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली की कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और क्रिकेट में भारत ने आज न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक ही पारी में 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट की अपनी अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा ने आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1987 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिसे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ है।
1: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
4: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
1: Aman Yadav ke saath Saklayan Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
5: बहुत

0: खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया। श्री मोदी ने आज कहा है कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा है कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूटे गए लोगों तक पहुंच सके। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना है, निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर करना और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण की विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार ताई तागाक ने आज राज्य विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मेन और राज्य भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, पार्टी के राज्य प्रभारी अशोक सिंघल, पार्टी के वरिष्ठ नेता और समर्थन मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री तागाक का व्यापक अनुभव, राज्य की गहरी समझ और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें राज्यसभा में अरुणाचल प्रदेश की एक मजबूत आवाज बनाएगी। प्रस्तावक की भूमिका निभा रहे उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की विकास यात्रा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिनिधित्व बेहद जरूरी है और उन्होंने चुनाव में तागाक की सफलता की कामना की। भारतीय सेना के स्पेयर हेड के अंतर्गत स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदार नागरिकता की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के लोअर सियांग जिले के लिकाबाली में प्रोजेक्ट नव भारत के तहत एक युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में लिकाबाली के निकटवर्ती सिलापोथार के 250 से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने भी भाग लिया। विद्यार्थियों ने प्रेरणादायक व्याख्यान सुने और भारतीय सेना के अनुशासन, वीरता तथा बलिदान को प्रदर्शित करने वाली चित्र फिल्में भी देखी। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम अफरा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड वजेंद्र प्रसाद कोतोकी तथा सभी सदस्यों को इस काम को पूरा करने में उनकी प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी और धन्यवाद किया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग, पालो राजा तथा केंतो जेनी के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी के लिए भी उनके योगदान की सराहना की। मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के तवांग, कुरुंगकुमे, क्रादादी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक आयोजित होंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि ये बैठक वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। उन्होंने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
4: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले,

0: सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: क्रिकेट में भारत ने आज न्यू चंडीगढ़ के महाराजा युवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक ही पारी और 300 रनों से हराकर टेस्ट क्रिकेट में अपनी अब तक का सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। और इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए, इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अपू गपक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे हाईलाइटेड द गवर्नमेंट्स 12 ईयर जर्नी ऑफ वेलफेयर फॉर द पीपल, पुअर पीपल। In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said that technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. Home Minister Amit Shah has said that welfare of the poor is the topmost priority of the government. In a social media post, Shah said that in the last 12 years, the government connected crores of citizens to banking facilities, financial security and self-employment opportunities through welfare schemes like the PM Awas, Jan Dhan, Mudra and PM Swanidhi. The minister said that by integrating the country's poor to the economic mainstream through basic infrastructure, social security and a better standard of living, a strong foundation for a developed India is being built. BJP candidate Tai Tagak today filed his nomination papers for the lone Rajya Sabha seat from Arunachal Pradesh at the State Legislative Assembly. Chief Minister Pema Khandu, Deputy Chief Minister Chawna Min, State BJP President Kalung Moyong, Party State in Charge Ashok Singhal, senior party leaders and supporters accompanied Tagak on the occasion. Khandu said Tagak's vast experience, deep understanding of the state and commitment to public service would make him a strong voice for Arunachal Pradesh in the Rajya Sabha. Chawna Min, who served as a proposer, said effective representation at the national level is vital as Arunachal Pradesh continues its developmental journey and wished Tagak success in the election. The high-powered committee constituted to frame the draft rules of the Arunachal Pradesh Freedom of Religion Act, APFRA 1978, has submitted its report and recommendation to the state government. Chief Minister Pema Khandu congratulated and thanked the committee chairman, Justice retired Brojendra Prasad Kotoki, and all members for their commitment and dedicated efforts in completing the task. He also appreciated the contributions of ministers Mama Natung, Balo Raja and Kento Jimmy for their leadership and active involvement throughout the process. The Delhi High Court today issued notices to the Centre and the Central Board of Secondary Education, CBSE, over a PIL challenging the newly introduced on-screen marking system for Class 12 board exam answer sheets. A bench of justices, Neena Bansal Krishna and Madhu Jain, sought responses from the Centre and CBSE on the plea filed by the National Students Union of India, NSUI.

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:10 हुए हैं। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी तवांग परिवार की ओर से आकाशवाणी की राष्ट्र के प्रति 90 वर्षों की गौरवशाली सेवा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, प्रस्तुत होता है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में आज आप सुनेंगे हमारे केंद्र के आज के शेष एवं कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो चलिए पहले आपको आज के शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से कुछ ही पलों में यानी संध्या के 6:20 पर कार्यक्रम शेदोन लेरिम में सुनिए बौद्ध सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र तवांग मठ के शिक्षक थुपतन सिंह और भिक्षु छात्रों के आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 7:00 तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर हमारे विशेष कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी की राष्ट्र के प्रति 90 वर्षों की गौरवशाली सेवा के अवसर पर सहायक निदेशक कला एवं संस्कृति सेवानिवृत्त श्री केजांग डुंडुप और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष तवांग श्रीमती नोरबू ड्रेमा से हुई भेंट वार्ता। वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत में आनंद लीजिए सुल्तान फिल्म से राहत फतेह अली खान, जब हैरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह और गदर 2 फिल्म से उदित नारायण, आदित्य नारायण और मिथुन के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे आज शाम 7:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। आज शाम 7:55 पर कार्यक्रम देशभक्ति गीत में सुनिए स्वदेश फिल्म से एआर रहमान के आवाज में एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। श्रोताओं, ये तो थे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 9 जून 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाने की तरह कल दोपहर 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में समाचार 2:15 पर। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदना में सुनिए लामा थुपतन वांगचू और साथियों से चंद बौद्ध भक्ति भजन कल दोपहर 2:30 पर। चंद आधुनिक बंगाली नगमों का आनंद लीजिए भूपेन हजारिका के आवाज में कल दोपहर 3:00 कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत। कल दोपहर 3:30 पर कार्यक्रम मेरी बात में सुनिए दोर्जी खांडू राजकीय महाविद्यालय तवांग के 5वीं सत्र की छात्रिका कुमारी यूट्यूब ड्रामा से स्कूल और कॉलेज में सहपाठ्यक्रम गतिविधियों के महत्व विषय पर एक वार्ता। महिलाओं पर आधारित गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत में सुनिए अंग्रेजी मीडियम फिल्म से तनिष्का सांगवी और सचिन जिगर, डियर जिंदगी फिल्म से अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल, जब तक है जान फिल्म से नीति मोहन और दोस्ताना फिल्म से शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे कल दोपहर 3:33 पर। कल दोपहर 3:50 पर फिल्म जगत के नवगीतों का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिए ब्रह्मास्त्र फिल्म से अरिजीत सिंह, तमाशा फिल्म से अलका याग्निक और अरिजीत सिंह, जब हैरी मेट सेजल फिल्म से अरिजीत सिंह, ट्यूबलाइट फिल्म से कमाल खान, नकाश अजीज, देव नेगी और तुषार जोशी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से विशाल ददलानी और शिफाली आलवरेज, अजब प्रेम

गजब कहानी फिल्म से नीरज श्रीधर और सुजैन डी मेलो, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान, बुलबुलैया 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार, केदारनाथ फिल्म से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी, सूर्यवंशी फिल्म से अरिजीत सिंह और नीति मोहन और द स्काई स्पिंक फिल्म से अरिजीत सिंह, निखिल डिसूजा और अंतरा मित्रा के आवाजों में चंद हिंदी फिल्मी नगमे। शास्त्रीय संगीतों का कार्यक्रम राग रंग में सुनिए पंडित डीके दातर से वायलिन वादन कल शाम 4:30 पर। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार शाम 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। रोजाने की तरह मोनपा कार्यक्रम नमथर लेरिम में सुनिए महामहिम टुलकू तेंजिन गिरमे रिम्पोछे जी से आचार्य शांति देवा द्वारा रचित बोधिसत्व के जीवन मार्ग के शिक्षा का शेष भाग कल शाम 5:00। 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मोनपा में। कल शाम 5:35 पर साप्ताहिक मोनपा कार्यक्रम दांगपोक सामा में आनंद लीजिए श्री पेमा टाशी और कुमारी देकी छोटन और मीपा तवांग के कलाकारों से चंद मोनपा लोकगीत। लेरिमसेडा शाम 6:00 6:10 पर कार्यक्रम जरोखा। बौद्ध भक्ति वंदना का कार्यक्रम जेदोन लेरिम में सुनिए आमा दोर्जी ड्रमा और साथियों की आवाजों में चंद बौद्ध भक्ति भजन कल शाम 6:20 पर। कल शाम 7:10 पर कार्यक्रम आज की कविता में सुनिए मोन्युल विद्या निकेतन विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा के विद्यार्थी श्री देवांग गोगोई से एक हिंदी कविता। फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से मैं आनंद लीजिए जब प्यार किसी से होता है फिल्म के चंद नगमों का कल शाम 7:11 पर। शाम 7:25 पर सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार शाम 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज 7:50 पर। कल शाम 7:55 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमीय तराने में सुनिए लक्ष्य फिल्म का एक देशभक्ति नगमा। रात्रि 8:00 आनंद लीजिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पॉट स्कैन रात्रि 8:30 पर, तत्पश्चात समाचार संध्या 8:45 पर तथा न्यूज एट 9 रात्रि 9:00। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसके साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा मोनपा में। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

Je

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए

0: Джима.
1: नमस्कार, आकाशवाणी तवांग से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में दो बहुत ही विशेष अतिथियां उपस्थित हैं। मौन क्षेत्र के बहुत ही अनुभवी सेवानिवृत्त असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर तवांग श्री केसंग दुनरूप जी और सेवानिवृत्त हेड मिस्ट्रेस सेरू सेकेंडरी स्कूल वर्तमान में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती नुरबुद्रमा जी। तो आप दोनों का हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, आप सभी को जरूर जानकारी होंगे कि ऑल इंडिया रेडियो, जिसे अब आकाशवाणी के नाम से जाना जाते हैं, जो कि आज यानी 8 जून 2026 को पूरे 90 साल हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी श्रोताओं को इस ऐतिहासिक अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं, और आज हम हमारे अतिथियों के साथ इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत होने से पहले आपको बता दूं कि आकाशवाणी की शुरुआत भारत में लोगों तक समाचार, शिक्षा, संगीत और महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से हुई थी। इसकी शुरुआत सन 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के रूप में हुई, जिसे बाद में सन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। आगे चलकर इसे आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा। उस समय रेडियो संचार का सबसे प्रभावी माध्यम था, इसीलिए आकाशवाणी ने देश के अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, संस्कृतियों को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक आकाशवाणी ने लोगों तक सही और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने का काम निरंतर किया है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पहला सवाल या चर्चे की शुरुआत मैं हमारे आज के मेहमान श्री केसंग दुनरूप जी से करना चाहूंगी। कहते हैं रेडियो एक विश्वास है, तो हमारे आज की यह चर्चा रेडियो से संबंधित ही है, तो हम इससे ही शुरुआत करते हैं, क्यों ना? तो आपको क्या लगता है रेडियो का महत्व क्या है?
3: सबसे पहले तो आकाशवाणी परिवारों को 90 साल पूरा होने के अवसर पर बधाइयां देना चाहता हूं। रेडियो के माध्यम से ही स्वास्थ्य का बोलिए, ग्रामीण क्षेत्र के बोलिए, विकास के बोलिए, शिक्षण संस्था के महत्व को बोलिए, रेडियो के द्वारा ही सभी को सूचित किया गया था। अगर रेडियो के द्वारा ही सूचित नहीं किया जाता तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता। तो हम समझते हैं कि रेडियो जो है, जब से रेडियो के साथ जुड़ा है, रेडियो साथ मैंने 1981 मुझे याद है, उससे पहले भी जुड़ा था मैंने 1978-79 से ही, जब हमारे यहाँ आकाशवाणी तवंग जब शुरू हुआ था, तो उस समय से ही हमने रेडियो के साथ जुड़ा था। सारा का सारा जितना भी देश का गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, रेडियो का ही काम रहा है।
1: आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम सन 1970-80 की दौर की बात करें तो उस समय तो रेडियो ही सबसे लोकप्रिय संचार का माध्यम था, जो हर समय हर सही जानकारी लोगों तक सही समय पर पहुंचाया करता था। हालांकि रेडियो ने आज भी अपने आप को और आधुनिक बनाते हुए आधुनिक तकनीकों के साथ साथ अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। और अब मैं अगला सवाल नुरबुद्रमा जी आपसे करना चाहूंगी। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आकाशवाणी के उपलब्धियों के बारे में या आकाशवाणी के योगदान को लेकर जिक्र किया था। यूं तो आकाशवाणी ने अपने योगदान देश को हर क्षेत्र में दिए हैं, लेकिन इन 90 वर्षों में आकाशवाणी की सबसे बड़ी उपलब्धि आपके विचार में क्या है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
2: सबसे पहले आकाशवाणी का 90वां वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में सभी को बधाइयां देती हूँ। पहले संचार का माध्यम ही रेडियो था, उसके पहले तो ना फोन था ना टीवी था। लोगों तक खबर पहुंचाना हो, मनोरंजन कराना हो, किसी भी तरह की जानकारी लोगों तक पहुंचाना है, तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा लोगों को जानकारी मिलता था, मनोरंजन होता था। तमाम तरह की खबरें, संसार भर की खबरें रेडियो द्वारा ही मालूम होता था।
1: और देश के संस्कृति और विभिन्न भाषाओं को जोड़ने में आकाशवाणी की क्या भूमिका रही है, इस पर आपका क्या विचार रहेंगे? मैं ये सवाल फिर से आपको ही करना चाहूँगी।
2: सांस्कृतिक सामाजिक से जुड़ाव रखना, ये रेडियो जो है लोगों को जोड़ता है। किससे जुड़ता है? समाज से जुड़ता है, बच्चों से जुड़ता है, युवक से जुड़ता है, बुजुर्ग से जुड़ता है। तो समाज के हर क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव का काम जो है रेडियो ही करता था पहले जमाने में। भी नए तरीके बहुत सारे संचार के माध्यम आ गए, लेकिन शुरुआत में तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था। किसी को भी अगर आपको मनोरंजन करना है तो रेडियो ही एक माध्यम था जिसका लोगों को लाभ मिलता।
1: संस्कृति और विभिन्न भाषाओं को जोड़ने के अलावा सरकारी जन कल्याणकारी योजना

0: योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में आकाशवाणी आज भी एक विश्वसनीय माध्यम है। आपके विचार में क्या है इस बारे में? मैं किशन धनरूप जी आपसे करना चाहूंगी ये सवाल जी।
1: आकाशवाणी के द्वारा ही हर क्षेत्र का हर विकास इसके बारे में जानकारी पहुंचाना आकाशवाणी का बहुत ही बड़ा भूमिका रहा है और हम चाहते हैं कि इसको और भी बढ़ा चढ़ा करके, आजकल के जमाने में मोबाइल का जमाना जरूर आ गया, लेकिन दूर दराज तक ये अपना एक सहारा, जहाँ नेटवर्क नहीं है, अपना सहारा बना करके देश के हर चीज जो है रेडियो के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। रेडियो के देन है
0: जी, क्योंकि हमने शुरुआत में इस बारे में चर्चा की कि रेडियो एक विश्वास है, क्योंकि आज जो है आधुनिक दौर जरूर है, चाहे आप दोनों ने बताया कि स्मार्टफोन्स आए हैं, टीवी आए हैं, बहुत सारे और भी तकनीक है, लेकिन रेडियो के जो विश्वास, लोगों में जो विश्वास है रेडियो पर, इसकी जगह आज तक कोई नहीं ले पाए, है ना
2: जी? क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ इंटरनेट का काम नहीं करता, वहाँ रेडियो हर जगह तक पहुँच सकता है, रेडियो सब खरीद सकता है। इसमें यही एक खूबी है कि जहाँ नेटवर्क ना हो वहाँ रेडियो काम आता है। तो चाहे कितना ही तकनीक क्यों ना आ जाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो तो वहाँ कोई खबर नहीं पहुँच पाती है। तो इसके अंदर में संस्कृति के साथ जुड़ने का मतलब यह है, आप रेडियो के माध्यम से आप पूरे भारतवर्ष में कितनी ही अलग अलग भाषाएं हैं, कितनी ही अलग अलग खान पान है, कितनी ही अलग अलग वेशभूषा है, तो ये सब की जानकारी जो है रेडियो के माध्यम देता है तो गांव तक पहुंचता है। ये बहुत रेडियो का सबसे प्रसारण जो है खास महत्व इसमें रहता है कि दूर दराज कहीं कितना ही दूर पहाड़ों तक न हो, कितना ही दूर गाँव शहरों से कितने ही दूर क्यों, लेकिन वो रेडियो से जुड़े रहते हैं तो उसको सारी जानकारी मिल जाती है।
0: अगर मनोरंजन की बात करें तो जो गाने हम रेडियो में सुनते हैं उसके जो आनंद रेडियो से जो आते हैं वो शायद बड़े से बड़े साउंड सिस्टम से नहीं आते हैं ना। तो और अब तो एक तरफ से और भी लोकप्रिय रेडियो होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हर महीने आखिरी रविवार को अपने संदेश देश में रह रहे अपने देशवासियों को और विदेश में रह रहे भारतीयों को बहुत ही सुंदर तरीके से
2: मन की बात है, मन की बात
0: है, मन की बात कार्यक्रम है ना
2: जी।
0: अब इसीलिए लोग और भी रेडियो से जुड़ने लगते हैं, फिर हम कार्यक्रम को जारी करते हैं। और दोनों ही रेडियो के युग के हैं, तो आप दोनों के जुड़ाव, जैसे सर ने कहा था 1978 से ही उनके रेडियो से जुड़ाव हुए, रेडियो से सबसे पहले जुड़ाव कब से हुए थे, और आप दोनों की ऐसी जो यादें, खूबसूरत यादें आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं जिसे आप आज भी विशेष रूप से याद करते हैं उन दिनों को?
2: मैं बताती हूँ, शेरू स्कूल में जब मैं वहाँ टीचर थी तो वो हमारे वहाँ बच्चों के साथ में एक बाल जगत प्रोग्राम है, शायद आपका इसमें बच्चों से रिलेटेड एक बाल जगत प्रोग्राम है
0: जी,
2: उसमें मुझे शेरू के बच्चों के साथ में बाल जगत में ये आने का मौका मिला था, तो प्रोग्राम करने का मौका मिला था, तो उसमें मैंने रेडियो में ही मेरे बच्चों से कविता सुनवाई, कहानियां सुनवाई, तो वो मुझे ऐसे क्षेत्र में जहाँ दूर शेरू तो बहुत दूर तो नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों ने रेडियो स्टेशन कैसा होता है उसे नहीं देखा था, कैसे रिकॉर्डिंग होता है नहीं देखा था, तो वो मेरे लिए भी वो फर्स्ट टाइम था, बच्चों को लेके प्रोग्राम प्रस्तुत किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस समय। जब भी मुझे रेडियो के साथ में बातचीत करने का मौका मिलते मैं हमेशा ये मौका के लिए इंतजार करती हूँ जी। ये मेरा एक सबसे पहले रेडियो में आने का मेरा पहला एक्सपीरियंस
0: जी। अब मैं किशन धनरूप जी, आपके जो उन खूबसूरत पलों को अगर आप हमारे साथ साझा करें तो हम सुनना पसंद करेंगे
1: जी। सबसे पहली बात तो सौभाग्य की बात है तवंग वासियों के लिए कि यहाँ पर एक आकाशवाणी का ये केंद्र यहाँ पर तवंग में स्थापित करके हमें तथा सभी लोगों को सुनने का मौका, चाहे अपना विचार यहाँ रखने का मौका सभी को उस समय से दिए जा रहे हैं 1974 से लेकर के। लेकिन मैं कॉलेज में जब पढ़ता था उस समय तो रेडियो सुनना तो होता नहीं था, तो वापस जब कॉलेज से छुट्टियों के समय में जब घर आ जाता था तो उस समय आकाशवाणी तवांग का जो प्रोग्राम 4 बजे से शुरू होता था भक्ति गीत से, तो वो भक्ति गीत जो है मैं कभी भी बिल्कुल नहीं छोड़ता था, हमेशा सुना करता था कि उस समय भक्ति गीत तवांग मोनेस्ट्री का जो स्वर्गीय लमसिंह दर्जी येलोंग दर्जी दर येलोंग तांगा जो वहाँ का भक्ति गीत मैं कभी भी मिस नहीं करता था। तब से 1976-7 उस समय से मैं रेडियो हाथ में लेकर के खास करके मन रहता था 4 बजे का प्रोग्राम सुनना। इसके बाद में 1981-82 तरफ जो होता था, जैसे रात को 9:45 बजे

0: हिंदी का न्यूज आते, लेकिन उस समय एक कैप्शन आता था। कैप्शन क्या था? न्यूज से पहले महात्मा गांधी ने कहा था, शराब शरीर और आत्मा को नष्ट करता है। तो उस कैप्शन को मैं कभी नहीं छोड़ता था।
1: अच्छा,
0: भले न्यूज सुनो या न सुनो, लेकिन वो कैप्शन सुनना है, इसके बाद न्यूज सुनना है।
2: मुझे एक और एक घटना याद आई।
1: हाँ जी,
2: 2010 में मुझे खलकतंग में सेंट्रल सुपरिटेंडेंट CBSE के एग्जाम लेने के लिए गई, तो उस दिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त जो है रेडियो बना था। क्योंकि जिस जगह में मेरा रुकने का जगह था, सर्किस हाउस था, लेकिन बहुत बड़ा सा घर था और वहाँ कोई भी नहीं रुकता था। अच्छा। तो मेरा ठहरने का इंतजाम वही था। तो वहाँ ना मेरे किसी से जान पहचान नहीं थी, तो मैंने अपने रेडियो को, मैंने वहाँ खलकतंग में एक रेडियो खरीदा 800 रुपए में। बहुत डर लगता था वो उस जगह पे, लेकिन वो रेडियो ने मेरा सारा डर जो है भगा दिया, क्योंकि उसमें आकाशवाणी तवांग करके प्रोग्राम उसमें बहुत साफ से सुनाई देता था। तो मुझे लगता था उस बड़ा सा घर में रहते हुए भी मैं तवांग में हूँ जैसा मुझे महसूस हुआ। तो उस समय मैं एक महीने तक मैं उस सर्किस हाउस में रही, और मेरा सबसे प्यारा दोस्त जो है रेडियो रहा। तो ये भी बहुत अच्छा अनुभव था।
1: जैसे किसन धुंडप जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने रेडियो के माध्यम से कुछ संदेश दिए थे, तो इस बारे में आपको कितना जानकारी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे?
2: 12 नवंबर 1947 में कुरुक्षेत्र जगह में महात्मा गांधी जी को पहुंचना था, लेकिन नहीं पहुंच पाया था।
1: हाँ जी।
2: तो वहाँ आम जनता लोगों को अपना संदेश को उन्होंने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से उन्होंने कुरुक्षेत्र के लोगों को, जनसभा को उन्होंने रेडियो द्वारा अपना संदेश भेजा था। तो और उन्होंने कहा था कि रेडियो जो है ईश्वर का अनुभव करता है,
1: ईश्वर का अद्भुत शक्ति।
2: हाँ, रेडियो जो है ईश्वर का अद्भुत शक्ति है। देखिए, याद आया अभी। तो सचमुच में अपने जीवन में भी अगर सोचते हैं कि अकेला है, तो रेडियो ईश्वर शक्ति से कम नहीं है महसूस। जैसे मैंने अपने घटना बताया, वो उस समय भी मुझे एक ईश्वर शक्ति ही रेडियो ने दिया। तो
1: हाँ जी, हाँ जी
2: जी,
1: बिल्कुल सही बात है। और अब हम हमारे आकाशवाणी तवांग केंद्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको जरूर जानकारी भी होंगी, फिर भी मैं इसमें थोड़ी सी जिक्र करना चाहूंगी कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित हमारे आकाशवाणी तवांग भी इस साल आगामी 23 सितंबर 2026 को पूरे 52 साल होने जा रहे हैं। और आज जब हम पलटकर वापस देखते हैं, तो आकाशवाणी तवांग ने हमारे स्थानीय समाज में कई सारे योगदान दिया है। आकाशवाणी तवांग ने स्थानीय बोली, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के साथ साथ लोगों तक समाचार, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, जैसे आप दोनों ने कहा था, और जागरूकता कार्यक्रम पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, विशेषकर दूरदराज में और सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों के लिए सूचना और मनोरंजन का एक विश्वसनीय माध्यम बना हुआ है। तो आप दोनों से मैं ये सवाल एक साथ करना चाहूंगी, आप दोनों को जो है आकाशवाणी तवांग के हमारे जितने भी हम यहाँ से कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, सबसे पसंदीदा कार्यक्रम आप तक कौन से लगे, और आप इस बारे में सुझाव हमें क्या देना चाहेंगे?
0: शुरू से मैंने आपको कहा कि जो भी प्रोग्राम भक्ति गीत का, जो जहाँ तक सवाल है, मैं तो भक्ति के साथ में जुड़ा हूँ। जितना भी भक्ति गीत जब भी आता है, 6:20 से लेकर के फिर भक्ति गीत का फिर आपका प्रसारण होता है, तो उसमें देख करके हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि आज हमारे जमाने में जो है इतना युवा पीढ़ी जो है इतना अग्रसर नहीं था इसके लिए, लेकिन अभी आकाशवाणी तवांग के द्वारा पता चल रहा है कि कितना आगे बढ़ रहा है, धर्म को दिल से चाहने वाले कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं।
1: आपके इस संदेश से मैं ये भी समझ सकती हूँ कि हम चाहे आधुनिक कितना भी क्यों ना हो, लेकिन अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए,
0: जी,
1: है ना?
0: वही है। जी, जी, जी, जी।
1: और अब मैं नवरमा जी आप सुनना चाहेंगे।
2: जी, 23 सितंबर 2026 में शायद ये आपका 52 साल पूरा हो रहा है। 52 साल कुछ कम समय नहीं होता, बहुत लंबा समय है। और सबसे पहले तो यहाँ आकाशवाणी तवांग में स्थापित हो सका, वो मन रीजन के लिए बहुत बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से योगदान है। इन 52 साल में आपका योगदान बहुत अच्छा रहा होगा, बच्चों के लिए, युवा के लिए, समाज के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए योगदान अच्छा रहा होगा। हमने आपका जब जब तवांग में कुछ न कुछ खास प्रोग्राम होता है, उसमें देखा है कि आप लोगों का टीम हमेशा पहुंचा होता है, रिकॉर्डिंग होता है, चाहे तुर्गिया पर हो, चाहे आपका कोई अवेयरनेस कैंप बोलो, उस सब में आप लोग का जो है डिपार्टमेंट पहुंचा होता है, बाकायदा आप लोगों के हमें रिकॉर्डिंग होता है। तो ये एक आने वाले समय के लिए भी यादगारी रहेगा। वो समय जो है, उस समय जो कुछ भी प्रोग्राम किया गया है, लोगों को उसका फायदा बहुत समय तक मिलता रहेगा। यहाँ कर्मचारी लोग जिस तरह ऐसे

0: आकाशवाणी तवांग को आगे बढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं, बहुत सराहनीय है। पहले यहाँ में उद्घोषक जितना होता था सब बाहर से होते थे शुरुआत में, लेकिन अभी देखते हैं कि चाहे मोम्पा का उद्घोषक हो या चाहे आपका हिंदी का हो, तो सब यहाँ का लोकल, तो लोगों को काम भी मिल रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को ना, और बात करने का एक अनुभव हो रहा है कि मुझे रेडियो में किस तरह से, क्योंकि रेडियो का एक बात बोला हुआ हजारों लोग सुनते हैं, तो आप लोग जिस तरीके से प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं तो वो सराहनीय है। इसके पीछे में आप लोगों का बहुत मेहनत है, लेकिन उस मेहनत में आप लोग खड़े उतरते हैं, तो आकाशवाणी तवांग को जब भी प्रोग्राम देखता है बहुत खुशी लगता है कि जिस तरह से भी लोगों को ज्ञान तो मिल ही रहा है, मनोरंजन तो आप करा ही रहा है, इसके साथ साथ हमारे पुराने जो लोक गीत है उसको भी आप सुरक्षित रह पा रहे हैं। किसी को पूछो तो किसी के पास में वो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, लेकिन आकाशवाणी तवांग के पास में ऐसा धन संपत्ति जमा है जिसमें पूर्वज लोग तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाले युग के लिए ये एक आपका संग्रह किया वाला जितना भी पुराने कल्चर है उसको संरक्षित रखते हैं, तो वो एक सोसाइटी के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। और जितने भी पुराने गीत गाने वाले थे सब तो गुजर गए, लेकिन उनकी आवाज अब भी हम लोग को सुनाई पड़ता है, तो
1: उनकी मौजूदगी
0: का एहसास होता है, तो वो कितना बड़ी बात है। जमीन से रिलेटेड, जमीन का बंटवारा कैसे होता है, दोता मतलब क्या होता है, मुर मतलब क्या होता है, आजकल के जमाने के बच्चों को तो शायद जानकर, गांव में रहने वालों को तो फिर भी हो सकता है, लेकिन अगर मुर क्या चीज है बोलने से कोई जवाब नहीं दे पाएगा, दोता क्या चीज है बोलने से कोई नहीं दे पाएगा होगा। अक्षर क्यों लगाता है दरवाजे के बारे में, खाली जंग में शौची और पत्थर रख के क्यों रखा जाता है, शादी ब्याह का तरीका क्या है, वो सब भी अगर रेडियो के माध्यम से आप बताते जाएंगे तो आज सब नया तरीका में चला गया है। जो भी शादी का रस्म होता है वो हम लोग का पुराने हमारे मोम्पा ट्रेडिशन में क्या रस्म है वो कोई नहीं जानता है। पुराने रस्म में जहाँ भी जिस तरह से भी होता है वहाँ का तौर तरीका है, उसको संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। इस तरह का होता है तो आप लोग जरूर इसको प्रिजर्व करके रखिए, ताकि आने वाला समय में आकाशवाणी तवांग एक ऐसा माध्यम रहेगा जहाँ से हम लोग जान सकेगा।
2: के लिए तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा ये रहेगा आपकी तरफ से कुछ बैठ कर कुछ चर्चा हो,
0: फिनपा लामा से लेकर उन लोगों से एक शादी के तौर तरीका क्या था, पहले जमाने में कैसे शादी होता है, बहुत सारी कहावतें हैं, उन कहावतों को जानने के लिए उसका भी एक संग्रह आप लोग जरूर कीजिए, ताकि बाद में हमारे जो नए युग के लोग आ रहे हैं वो समझ सके कि वो किस संदर्भ में कहा गया है। जरूर उनको मौका देके उसको प्रिजर्व करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि कहीं में ना मिले तो आकाशवाणी तवांग के पास में वो संग्रह हो जिससे हमें मालूम हो ये तौर तरीका था तो पहले, ये मेरा एक सुझाव है।
1: मैं धन्यवाद करती हूँ और आप दोनों ने दिए हुए सुझाव को हम जरूर इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। जी तो अब हमारे यह कार्यक्रम के समय जो है समाप्त होने जा रहे हैं, तो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आप दोनों ने समय निकालकर हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: धन्यवाद।
1: अंत में आकाशवाणी के गौरवशाली स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं मैं आप सभी को देना चाहूंगी और आपकी आवाज यूं ही देश के हर दिल तक पहुंचती रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे हमारे विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी की राष्ट्र के प्रति 90 वर्षों की गौरवशाली सेवा के शुभ अवसर पर सहायक निदेशक कला एवं संस्कृति सेवानिवृत्त श्री केसांग डुंडुप और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष तवांग श्रीमती नोरबू ड्रेमा से हुई भेंट वार्ता, उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही ये विशेष कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:30 हो रहे हैं। श्रोताओं प्रस्तुत है वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

अगला नगमा पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में। जब हैरी मेट सेजल फिल्म के इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का अंतिम नगमा सुनिए, गदर 2 फिल्म से उदित नारायण, मिथुन और आदित्य नारायण की आवाजों में। मिथुन द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने।

गदर टू फिल्म के इस नगमे के साथ ही वीर सैनिकों पर आधारित कार्यक्रम फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। आकाशवाणी के आज 90 साल पूरे हो रहे हैं। 8 जून 1936 को ही इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो AIR रखा गया था। ये दिन देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में एक खास पल है।

0: जब एक ऐसी आवाज ने जन्म लिया जो पीढ़ियों तक गूंजती रही। आजादी के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम अपनाया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन चलाती है जो भारत की 98% आबादी तक पहुंचते हैं और 23 भाषाओं व 140 बोलियों में प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी एक्सटर्नल सर्विस डिवीजन 100 से ज्यादा देशों में प्रसारण किया जाता है, जिससे भारत की आवाज दुनिया भर में पहुंचती है और विदेशों में भी बसे हुए भारतीयों से जुड़ाव बना हुआ रहता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की री एग्जाम के लिए एग्जाम सेट इंटीमेशन स्लिप जारी कर दी है। परीक्षा इस महीने की 21 तारीख को होनी है। ये परीक्षा पेन एंड पेपर मोड में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएंगी। NTA ने साफ किया है कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप एडमिशन कार्ड नहीं है, इसे सिर्फ उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किया जा रहा है जहां उनका परीक्षा केंद्र होगा। मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट UG परीक्षा गत 3 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बीच इसे 12 मई को रद्द कर दिया था। CBI की जाँच अभी जारी है। अरुणाचल प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम आफ्रा 1988 के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई हाई पावर्ड कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें सौंप दी हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कमेटी के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड विजेंद्र प्रसाद कोतोकी को और सभी सदस्यों को इस काम को पूरा करने के उनकी प्रतिबद्धता और समर्पित प्रयासों के लिए बधाई दी और धन्यवाद ज्ञापन दिया। उन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग, विधायक बालू राजा और केंद्र जीने के नेतृत्व और सक्रिय भागीदारी के लिए भी उनके योगदान की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए BJP उम्मीदवार ताई तागक ने आज राज्य विधानसभा में अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चौना मेन, राज्य भाजपा अध्यक्ष कालिंग मोयोंग, पार्टी के राज्य प्रभारी अशोक सिंघल, पार्टी के वरिष्ठ नेता और समर्थक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री तागक का व्यापक अनुभव, राज्य की गहरी समझ और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उन्हें राजभाषा में अरुणाचल प्रदेश की मजबूत आवाज बनाएगी। डिजिटल अरुणाचल के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी AICOE की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT अरुणाचल प्रदेश के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए। ये MOU IT और कम्युनिकेशन सेक्रेटरी डॉ सोनल स्वरूप की मौजूदगी में स्टेट काउंसिल फॉर IT एंड ई गवर्नेंस SCITEG और NIT अरुणाचल प्रदेश के बीच हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते पर NIT के डायरेक्टर प्रोफेसर MB अवारे और SCITEG के डायरेक्टर सह मेंबर सेक्रेटरी नीलम यापिंताना ने हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत इंडिया AI के सहयोग से बनने वाला ये AICOE पूरे राज्य में रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक हब के तौर पर काम करेगा। पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण अपर सुबनसिरी जिले के क्यूबा सर्कल के कई स्थानों में भूस्खलन और सड़क ढह गई है, जिससे 5,000 से अधिक की आबादी वाले 20 से अधिक गांव अलग थलग पड़ गए हैं। पूत और लूची लूत से जोड़ने वाली PMGSY सड़क कथित तौर पर बह गई है, जिससे परिवहन, आपातकालीन चिकित्सा पहुंच और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ तरह से प्रभावित हुई है। इस बीच किबाजत PM मायूम दोबिन ने कहा है कि मामले पहले ही संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है और उम्मीद जताई है कि सड़क संपर्क बहाल करने और प्रभावित ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों तवांग, कुरुंकुमे, क्रादादी, दिवांग वैली और अंजाव को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और छात्र छात्राओं में शिक्षा, जेंडर इक्वालिटी, मानसिक स्वास्थ्य, करियर के मौके, सामाजिक जिम्मेदारियों, कानूनी जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और वित्तीय साक्षरता जैसे अहम मुद्दों पर जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के तहत आज तवांग के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और ऑडिटोरियम में युवा और किशोर छात्र छात्राओं के लिए लैंगिक समानता पर एक व्यापक करियर काउंसलिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी ईटानगर, द न्यूज रेड बाय अपोगा पक। आकाशवाणी इज सेलिब्रेटिंग इट्स 90 ईयर्स टुडे। दिस डे ऑन जून 8, 1990

स्वदेश फिल्म के इस नगमे के साथ ही कार्यक्रम देशभक्ति गीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं। श्रोताओं अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है उर्गेलिंग विकास नगर तवांग के लोपसांग टेंडा ने। आपकी फरमाइश पर पेश है गंगा की लहरें फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया गीत बोल मजरू सुल्तान।

0: अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है पैगंग लो से पेमा टाशी फुनसो वांगमू लोपसांग तोंगचिन दोर्जी और सिटिम से प्यार झुकता नहीं फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है आनंद बख्शी ने, गाया आशा भोसले और किशोर कुमार ने और संगीत दिया है आरडी बर्मन ने।
1: अरे

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। मोक्तो तवांग से थ्रिंग दोर्जी निमा यांगजोम, दोर्जी गेमू रिंचिन ग्रीमा, केजांग लामू दावा छोटन और तिनजिन मंकी के फरमाइश पर सुनिए धुंध फिल्म से महेंद्र कपूर का गाया गीत। रवि द्वारा संगीत इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

नगमा सुनिए हेलम असम से ज्योति सुरीन के फरमाइश पर डुप्लीकेट फिल्म का नगमा। गीतकार जावेद अख्तर, संगीत अनु मलिक का और आवाज दिया है कुमार सानू ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का अंतिम फरमाइश किया है मलवा रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन हिंगरी रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश दाकड़ नायमा, रांजूबाई दाकड़, युवराज सिंह दाकड़ और शिवांगी दाकड़ ने। आप सभी के फरमाइश पे प्रस्तुत है दो खिलाड़ी फिल्म से मोहम्मद रफी का गाया गीत। गुहार कानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ 8। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है। चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल, जो कोई इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा। उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है। पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था। हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था, तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी। आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही है आकाशवाणी?

0: बदलते स्वरूप में इसकी पहुंच को लोगों तक और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती है तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
1: देखिए, आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है। उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में हैं, पंडित रविशंकर जी उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है। रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
0: तो इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ, रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
0: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर न और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी है ही है। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है। और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए, वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम

0: आएगा दुनिया में, स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है। ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं, या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
1: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, रंडल साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पे जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है। और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही है, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्जवल होगा।
2: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछा चाहिए बताएं। जी आप बताएं।
3: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर कि सर की पहली कमाई मैम के भी युवाणी से, आपके भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हूँ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
2: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
3: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ, तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेएस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए।
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
4: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
4: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाए, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर,
2: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग के कार्यक्रम उस पर जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाना सिखा रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कहीं पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कर रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा, तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
0: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिए वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
2: जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
0: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार है वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
2: बिल्कुल,
0: और जितने लोग

0: भी कार से सफर,
1: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो,
0: तो रेडियो वो इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का। तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते, अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं। तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
1: बिल्कुल।
2: क्वेश्चन प्लीज।
3: नमस्कार, मैं एज इंजीनियर यहाँ, मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी।
1: अच्छा।
3: और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे। लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है। आकाशवाणी में आर्टिस्ट लोग आते हैं, तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
1: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
4: मैम, मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए। क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
5: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए। किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है, विशेष रूप से आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड है, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
1: बड़े-बड़े तो संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
5: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
1: बिल्कुल आपकी बात सही है, ये बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पे अभी मैंने कुछ 2-3 पंक्तियां लिखी है अपने मेरे कवि बनने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
6: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
7: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉ. वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियमन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक, प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र

0: बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। यह योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य

0: वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
1: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उन्हें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
0: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
3: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
2: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।